राय जी ने पछाण लिया, ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता, आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया, मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां।

हाथों मोती खाना छोड़ दिता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या हुण नहीं लेना। उथों वे ही नदी ते आए, बाला नाल है। साहब जी ने आख्या, बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख, ते असी वेज इश्ना

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। ते भाई जय राम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, भरोसे वाली सी, कहन लगी इवें ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कौतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, ओ कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया गुरु

द्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोग कर्म कांडां विच पए होए। एक पंडित सूरज वल मुंह करके ते गंगा जल पाई जाऊंदा, ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या, पंडित जी आ की कर रहे हो? पंडित कहिंदा, जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे, अच्छा आ पूर्व वल करके पंडित जल दे रहा है सूरज नू, ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सतसंगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा, सूरज इस पासे है।

आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच, मैं उना नू पानी पा रहे खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है, आख्या कोई 400-500 मील होना इथो। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिख बोलो श्री। बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन। और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे, उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते 10 बन जाएगा, 2 जीरो पावेगा 100, 3 पावेगा 1000। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

ते जन कब हूं नहाए। ताल जो जाने पासा, ताल जो जाने पासा, ते जन कब हूं नहाए।

सेवा पर मोह के है सब सरमन दे कब हम न करो शिवा पर मोह के है सब सरमन दे कब हम न करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखा अपने ही मन को लाल जहां को काउ चले और सिखा अपने ही मन को लाल जहां

आन को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

पर ही जब्त जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदान करे अग आग करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं के प्रसाद को मिले, इन्हीं के प्रसाद को मिले, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की, कटाखन को

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

क्योंकि तुम हो सब राजन के राजा। मैं ऐसा सुनिया है ते सुन सुन के हुण मैनू

मित्र कुटुंब तान पावन मामा ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तान रहण वास्ते सोने पावन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे

कला नाम करके खालसा ने जिन्हें आत्म रस नु जान लिया ओहो ही खालसा है। सिर्फ नाम दे नाल खालसा ने आप जिन्हें मर्जी कह देने आओ खालसा जी, कई अपने नाम दे नाल भी खालसा लगा लेंदे।